कभी न किरवान नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन